0: Striker Radio Network across London, Manchester, and the Midlands.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: 0208574 8410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
4: Relax, I've booked the Uber already.
3: How? My roaming isn't even working yet.
4: I switched to Simsy before we left London.
3: Simsy? Since when are you the tech expert?
4: Since I decided I want a stress-free holiday.
5: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
6: T's and C's apply.
7: रात भर न थमे न रुके क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।
8: हम प्यार तुम्हें करते हैं, हमें अपना

0: लाइका गोल्ड
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 Greens by Danube Prime location
1: High appreciation
2: In Dubai
3: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs Pepe's presents
4: Atif Aslam live in the UK
5: Dil diya galla karange na
3: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
4: Book your tickets now at AXS.
3: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Taza kare apni yaadein. Leica Gold ke saath.

सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

0: है लाइका गोल्ड.
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर.
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन.
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स.
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी.
1: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000.
2: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
4: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
3: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
4: And you didn't pay those massive roaming charges?
3: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
5: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100+ countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
6: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 02071321458 या ईमेल sales@laikaradio.com.
7: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमर स्मिथ हमारे राम बुक योर टिकट्स नाउ विजिट www.eventimapolo.co.uk एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर Radio.
2: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
0: Atif Aslam live in the UK.
3: Oh, Julelal Kalandar, mast mast da.
2: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
0: Book your tickets now at AXS.
2: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
0: Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: Are we there yet?
5: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
6: Relax, I've booked the Uber already.
5: How? My roaming isn't even working yet.
6: I switched to Simzy before we left London.
5: Simzy? Since when are you the tech expert?
6: Since I decided I want a stress-free holiday.
7: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
8: T's and C's apply.
0: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर
9: तुम

हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भुआई है। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मे जे

सुने हाथ वैसगा नानक भक्तां सदा विगास सुने दुख पाप का नास मन्ने की गत कही ना जाए जे को कहे पिछे पछताए।

होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पथस्यों प्रगट जाए मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए।

साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव संख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर भार होए।

ते तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

आद अनाहत जुग जुग एक ओवेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एक वार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक ओवेश एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगति छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई।

0: This is Like a Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
1: TravelHub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit TravelHubWorld.com.
2: हिल्लारो अने उम्ब्रो जेवी अक्लेम्ड गुजराती फिल्म्स ना नेशनल एवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह फरी एक वार लईने आव्या छे एक इमोशनल कॉमेडी.
3: तमारो तो जिंदगी छे के फिल्म नी वार्ता.
2: एक इव हार्ट जी कई फील करतु नतु बट वन बीट एंड एवरीथिंग चेंज.
4: तमारो हृदय धबकारो चुकी जाय छे.
2: धबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आरजव देसाई इन सिनेमास नियर यू.
5: स्टेप इनटू द न्यू ग्रैंड शोरूम ऑफ काजोल्स कचोर साउथॉल
6: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
5: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
6: plus beautiful jewelry and accessories, find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
5: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
7: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well-planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
8: Ek badhiya kadak गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो आए हाय मजा आ जाए.
9: अरे समझो, हो गया. रॉयल चाय है ना, अब भी बन जाएगी. सिर्फ पैकेट खोलो और गर्म पानी में घोल लो, चाय तैयार, वो भी रॉयल टेस्ट के साथ. रॉयल चाय, झटपट, कहीं भी, कभी भी.
10: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
11: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स.
10: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स.
11: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग.
0: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Gold Breakfast with Kajal.
12: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 years of experience, 40,000 passengers every year. Star Tours is trusted for a reason by travelers.

0: Raju's Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday.
1: ये है Like a Gold 10:35 AM
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com
3: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड
3: विजिट TravelHubWorld.com
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.40% on non-withdrawable fixed deposits. Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
7: 105 super hit shows pachi have London ma aavi rahyu chhe ek dhamakedar international Gujarati comedy Jai's Entertainment line aavi rahya chhe Sakhna Rejo Husband ji. Leena Shah ane Sameer Shah saathe haasya ni full guarantee. Fridays 26 June 27 Patidar Samaj Wembley Park ma ratna 8 vage. Tickets booking mate visit karo eventbrite.co.uk call karo Videorama athwa call करो मिस्टर बी 07860280655 सखना रहजो हस्बैंड जी
8: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे
9: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जाई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर
8: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
9: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अने जर्मनी साथे
8: दर्शन पण अने यूरोप पण
9: सीट्स जल्दी भराई रही छे आज ज बुक करो स्टार टूर साथे
8: कॉल 0208900-2323 द स्टार टूर्स
9: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन
10: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
11: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
12: Bhakti, Prem aur Samarpan ki ek divya kahani.
13: मत जाओ काना क्यों जा रहे हो
14: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं
12: देखिए कृष्णा राधा रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला
14: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा
12: कृष्णावतारम 7 मई से आपके नजदीकी सिनेमाज में
14: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी
15: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in-store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
16: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Gold Breakfast with Kajal on Leica Gold.

0: जायका गोल्ड
1: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट ट्रेवल हब world.com
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office. On 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: Every child deserves a childhood, but many children in India are forced to leave school far too early. Cry UK is helping children stay in school and build brighter futures. Just £25 could help 2 children continue their education. Visit www.ukcry.org and help to make a difference.
6: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEVESAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
7: Psst. You. Yeah, you. Listening to the radio. Up to whatever. We just wanted to let you know there's a lotto draw coming up and...
8: It could...
7: Yeah, what he said. Lotto, from the National Lottery. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
10: भक्ति प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी
11: मत जाओ काना क्यों जा रहे हो
12: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं
10: देखिए कृष्णा राधा रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला
12: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा
10: कृष्णावतारम 7 मई से आपके नजदीकी सिनेमाज में
12: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी
13: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रागासन
14: गोल्ड ब्रेकफास्ट विद काजल Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: गुड मॉर्निंग टू यू। आइए एक नज़र आज के मौसम पर डालते हैं। लंदन और आसपास के इलाकों में लाइट क्लाउड्स एंड जेंटल ब्रीज, 14 डिग्री मैक्स एंड लो विल बी 7 डिग्री सेल्सियस। एंड इन लेस्टर एंड मिडलैंड्स में लाइट क्लाउड्स एंड जेंटल ब्रीज, 12 डिग्री सेल्सियस मैक्स में मैक्सिमम एंड इट विल गो डाउन टू 2। अपने दिल के मौसम को अच्छा रखिए, बाहर का मौसम जैसा भी हो।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
2: Like a gold.
3: The Ravi Sharma Show.

0: जी हाँ, सवारी तो आई है लेकिन रवि जी नहीं है। आपकी सेवा में हाजिर है आपकी अपनी सरिता सबरवाल। गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को एंजॉय कर रहे हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, तो चेयर अप। लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इन्जॉय। जियो शान से, मुस्कुराते गुनगुनाते, चहकते महकते और तिरकते हुए गाने चुन चुन कर लाई है सरिता आप ही के लिए। आज भी प्रोग्राम में समाचार भी होंगे, चिंतन भी होगा, कुछ इधर उधर की बातें भी और आपके पैगाम भी। चलिए आज के प्रोग्राम को शुरू करने से पहले बता दें कि काजल थी यहाँ हॉट सीट पर, शी इज बैक, यस। और दूसरी तरफ थे डॉनी ब्रास्को और अब वहाँ है खुश और यहाँ है सरिता। आप कहाँ हैं बता दीजिएगा। आप तक पहुँचा रही हूँ बैक टू बैक तो बहुत ही मधुर से गाने।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: Travel Hub.
2: At all protected.
1: Leica. Another huge giveaway is coming.

0: प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। दो खूबसूरत गीत आपने सुने। 1988 की फिल्म थी 20 साल बाद, जिसका गीत मैंने आपके साथ शेयर किया। मोहम्मद अजीज और सारिका कपूर ने गाया था उस गीत को। मेरे सामने तू दिन रात रहे, बहुत प्यारा गीत है और आपको पसंद भी ज़रूर आया होगा। दूसरा गीत था जवानी दीवानी से 1972 की फिल्म, किशोरदा की आवाज़ आपके साथ हमने शेयर की। और भी जिन्हें पता है कि सरिता के प्रोग्राम में कुछ ऐसा होता है कि एक ही मौजू पर सारे गाने होते हैं, तो ये मेरा प्रोग्राम नहीं है, रवि जी का प्रोग्राम है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, पहले दो गीत आपकी सेवा में जो मैंने पेश किए, उनमें एक वर्ड कॉमन रहा, वो और वो वर्ड था सामने। आपको कोई गाना याद आ रहा है जो सामने जिसमें वर्ड आता है और आप चाहते हैं कि प्रोग्राम में शामिल हो, तो यू कैन ऑलवेज टेल मी। लेकिन बाकी सारे के सारे गाने ऐसे नहीं होने वाले हैं। सुनते रहिए, साथ देते रहिए। जो मेरे साथ ही ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और अपने अपने मैसेजेस मुझ तक पहुंचा रहे हैं, थैंक यू एवर सो मच। और चलिए आगे बढ़ें और बता दें कि SBI वाले क्या रेट दे रहे हैं आज।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भी अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ज़रिए आप पैसे कहीं भी इंडिया में पहुंचाना चाहते हैं तो काम बड़ा आसान है। यू कैन डू इट वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। और आज आपको रेट बड़ा अच्छा मिल रहा है, 128 rupees and 45 paisa अगेंस्ट 1 British sterling pound.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Leica Gold.

0: किसी की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक माइक्रो फूड कंटेनर्स।
2: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
3: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
2: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
3: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
2: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड।
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
5: फोन 0208574 8410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: 105 सुपरहिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो हस्बंड जी
7: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
3: Every child deserves a childhood, but many children in India are forced to leave school far too early. Cry UK is helping children stay in school and build brighter futures. Just £25 could help two children continue their education. Visit www.ukcry.org and help to make a difference.
8: भक्ति प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी।
9: मत जाओ काना, क्यों जा रहे हो?
10: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
8: देखिए कृष्णा राधा रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला।
10: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा।
8: कृष्णा अवतारम 7 मई से आपके नजदीकी सिनेमाज में।
10: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।
11: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
12: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: बहुत ही प्यारा सा गीत था, बड़े दिनों के बाद सुना और मुझे भी बहुत अच्छा लगा और आपने भी पसंद किया, ये जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। और अब ज़रा न्यूज़ देख लें कि क्या चल रहा है दुनिया में। राइट, बंगाल चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ने भारत को लेकर बड़ी उम्मीद जताई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए लंबे समय से अटके तीस्ता जल समझौते पर फिर से विचार किया जा सकता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ममता बनर्जी को भारत बांग्लादेश के बीच तीस्ता जल विवाद को सुलझाने की कोशिशों में एक रुकावट के तौर पर देखा जाता है। अमेरिका की यूरोप में बड़ी सैन्य मौजूदगी है और कई शोध संस्थानों के मुताबिक वहां दर्जनों अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। इन अड्डों में 80,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात हैं। अमेरिका सेना की मौजूदगी दूसरे विश्व युद्ध के बाद से यूरोप की सुरक्षा की रीढ़ रही है। ये मौजूदगी मुख्य रूप से जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और पोलैंड में केंद्रित है। 2025 की शुरुआत तक यूरोप में अमेरिकन सैनिकों की संख्या करीब 84,000 यानी 84,000 थी। ये समय समय पर तैनाती और परीक्षण के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि होमुर स्ट्रेट से फंसे हुए जहाज़ों को निकालने के लिए शुरू किए गए अमरीकी अभियान को कुछ समय के लिए रोका जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि एक दिन पहले शुरू किया गया प्रोजेक्ट फ्रीडम आपसी सहमति से रोका जा रहा है क्योंकि ईरान के साथ समझौते की दिशा में काफ़ी प्रगति हुई है। ईरान के सरकारी मीडिया ने इसे अपनी जीत बताया और कहा कि शिपिंग के लिए अहम इस जल मार्ग को दोबारा खोलने में लगातार नाकामियों के बाद ट्रंप पीछे हट गए हैं। अमेरिकन राष्ट्रपति की ये घोषणा ऐसे समय आई है जब विदेश मंत्री मार्को रूबिया ने कहा कि ईरान के खिलाफ शुरुआती अमेरिका इजराइल अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अपने मकसद को हासिल करने के बाद ख़त्म हो गया है। ये थी कुछ इधर उधर की न्यूज़, लेकिन आप हमारे यहाँ से टॉप ऑफ द आवर न्यूज़ सुनते हैं और वहाँ पर साथ भी देंगे।
1: ये है लाइक अ गोल्ड 10:35 AM
0: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: जबरदस्त गाना और सुनकर मजा आ जाता है। ऐसे गीत कहाँ बनते हैं आजकल। यहाँ मैं एक आपको डू यू रिमेम्बर दैट लेडी जो कि एकदम अचानक आई थी और छा गई थी। रियलिटी शो में भी उनका बहुत जिक्र होता था। नाम था उनका रानू मंडल। उनके बारे में लेटेस्ट कुछ आपको मालूम है? नहीं पता है तो बताएगी सरिता, थोड़ा इंतजार।
1: लाइका गोल्ड Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you today. Indian rupees 128.90, Pakistani rupees 379.25, Bangladeshi taka 167.15, Afghani is 85.86, Sri Lankan rupee 435.91 and US dollars 1.36.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional

0: additional £5 cash back when you use the code LIKER. Download LEMFI now. T's and C's apply. LIKER
1: Gold. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: भाई गोल्ड का रेट अभी अभी बढ़ा है एंड इट्स 110 pounds and 91 pence पर ग्राम नाउ.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: ये है Like a Gold.
1: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
2: भी कल का मैच बहुत जबरदस्त था. दिल्ली कैपिटल्स एंड चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच हुआ था एंड चेन्नई सुपर किंग्स वन बाय 8 विकेट्स विद 15 बॉल्स रिमेनिंग. और आज इंतज़ार कीजिएगा, 3 बजे मैच शुरू होगा. सनराइजर्स हैदराबाद एंड पंजाब किंग्स के बीच होने वाला है ये मैच. तो जैसे मैच शुरू होगा तो आपको हम अपडेट भी करते रहेंगे.
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything and this one is a villa.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
7: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
6: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
7: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
6: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
8: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
9: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
8: ये तो बताओ, कोई पता चला?
9: गुरु गुरु,
10: इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून.
8: साधु, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
11: शीघ्र शीघ्र.
10: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून. टू बुक कॉल 0208-514-5400. बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट.
12: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड.
13: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
14: हिल्लारो अने उम्रो जेवी क्लेम्ड गुजराती फिल्म्स ना नेशनल अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह फरी एक वार लेने आया छे एक इमोशनल कॉमेडी.
15: तमार तो जिंदगी छे के फिल्म नी वार्ता.
14: एक यू हार्ट जी कई फील करतु नतु.
15: अरे वार्ता अधूरी छे भाई.
14: बट वन बीट एंड एवरीथिंग चेंज्ड.
16: तमारो हृदय धबकारो चुकी जाय छे.
14: धबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आरजव देसाई.
17: लोकेशन अहिना करेला अहिज भोगवाना छे.
14: इन सिनेमास नहीं आयु.
18: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
19: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable
11: unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. Apta bonded.
19: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
20: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स।
21: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट।
20: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स।
22: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
1: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk. Wake up to Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Leica Gold.

0: What a beautiful composition by जयदेव जी. जयदेव जी ने इस गाने को कंपोज किया था और बहुत प्यारी फिल्म थी. फिल्म का नाम था हम दोनों. अगर आपने नहीं देखी, जब कभी मौका मिले तो देखिएगा. ये गाने बहुत, इस फिल्म के सारे गाने बहुत अच्छे थे और इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन साहिर लुधियानवी जी ने लिखे थे सारे के सारे गीत. एंड स्पेशली अभी ना जाओ छोड़ के, तो जैसे हर किसी की ज़ुबान पर है ये गाना और सभी इसे जब कभी भी प्ले करो तो सभी पसंद करते हैं. देन अल्लाह तेरो नाम, प्रभु तेरो नाम, देन जहाँ में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं, बहुत कभी खुद पे, सारे गाने बड़े अच्छे थे. एंड फिल्म के हीरो आप जानते हैं कौन थे? देवानंद साहब और नंदा थी इस फिल्म की हीरोइन. साथ में थी साधना. एंड विजय आनंद ने स्टोरी लिखी थी शायद, और इस फिल्म को प्रोड्यूस किसने किया था? देवानंद साहब ने, आई थिंक सो. चलिए, बातें बहुत हो गई और आज के प्रोग्राम का अगला गीत हमें अब पहुंचाएगा न्यूज़ तक. न्यूज़ के उस पार आप इंतज़ार कीजिए एक प्यारा सा, एक बहुत अच्छा इमोशनल एंड मोटिवेशनल चिंतन लेकर मैं आपके साथ रहूंगी. तो कहीं नहीं जाने का, यहीं रहिएगा. लाइक अ रेडियो नेटवर्क के ज़रिए हमारी आपसे मुलाकात होती है. मैं सरिता हूँ. अगर आप पहली दफ़ा मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो बता दूँ कि आई एम सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा. लेकिन एवरी वीकेंड 4 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं आपका साथ निभाने के लिए आप ही के घर में पहुंच जाती हूं. जी हां, जिस भी जरिए से सुन रहे हैं, वेलकम वेलकम. इसी तरह से सुनते रहिएगा
1: द रवि शर्मा शो ऑन लाइक अ गोल्ड.
2: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

0: across Greater London. This is Leica Gold, 10:35 a.m., DAB and online, a part of the Leica Radio Network.
1: From Sky News Centre at 11. Three ill passengers on board a cruise ship at the centre of a hantavirus outbreak are due to be evacuated this morning. It's currently anchored off the coast of Cape Verde and had been planning to travel onto the Canary Islands, but its leaders opposed to that. Three people have already died. Dr. Jacqueline Weyer is from the Centre of Communicable Diseases in South Africa.
2: The investigations have found no rodent infestations on the ship itself. So we really do believe that we will find that the exposure event was a haphazard event during the course of touring through Argentina.
1: A former SNP council leader's been jailed for 18 months for a string of sex offences. Jordan Linden, who resigned as the leader of North Lanarkshire Council in 2022, was convicted of five sexual assaults against young men. One victim was just 14. He ignored questions as he arrived at Falkirk Sheriff Court.
3: Why did you think you could get away with it? Did you think you were above the law?
4: This today is your last chance to say sorry to your victims. Are you going to do that?
3: Why do you continue to refuse to take accountability?
1: Donald Trump is pausing his plans to get the US military to shepherd ships through the Strait of Hormuz so America can engage in peace talks again. Global oil prices have dropped after the announcement. A 13-year-old boy's been arrested after police were attacked with petrol bombs in Londonderry. Fireworks were also thrown and an investigation's underway to identify those involved. Scientists have developed an at-home test that could predict the risk of Alzheimer's. A study suggests a finger prick blood test and an online assessment could help spot those at risk. And Ryanair boss Michael O'Leary's calling for an end to early morning holiday pints in airports. It's to cut down on drunken passengers disrupting flights. That's the latest. I'm Faye De Silva.
0: Leica Radio, finalist at the Radio Academy ARIA's 2026.
5: Now with Lidl Plus, collect points that you can turn into possibilities. Pepper abilities. Ooh. Pasta abilities. Burrata abilities. Kayak abilities. So collect and spend your Lidl Plus points on hundreds of rewards or money off coupons. Lidl, more to value. Exclusions apply. For T's and C's, lidl.co.uk/lptv. 18 plus GB only.
0: Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
6: Right, light cloud and gentle breeze in London and in surrounding areas. 14 degree max and low will be 7 degree Celsius. And Midland may be mawsam. Well, kal se thoda temperature kam hai. Light clouds and gentle breeze, maximum 12 and low will be 2 degree. अपने दिल के मौसम को अच्छा रखिएगा. बाहर का मौसम जैसा भी हो, हम कोप कर लेते हैं.
0: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. The Ravi Sharma Show.
6: ये रवि शर्मा जी का ही शो है और इस वक्त हॉट सीट पर है आपकी प्रेजेंटर सरिता सबरवाल. ये वक्त तय है, हर रोज वो आपके लिए मंडे टू फ्राइडे लेकर आते हैं एक चिंतन. तो आइए उसी सिलसिले को आगे बढ़ा दें. चिंतन, एक विचार, एक घटना, एक कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर करे और बदलाव की ओर प्रेरित करे, ताकि आप और भी अच्छे इंसान बन पाए. आज के चिंतन का शीर्षक है वो आखिरी बस. कभी कभी जिंदगी हमसे कोई बहुत ही ज़रूरी मौका छीन लेती है. हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लगता है जैसे सब खत्म हो गया। लेकिन ठीक उसी वक्त हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारी पूरी जिंदगी बदल देता है। और ऐसी ही कहानी है एक छोटे कस्बे के लड़के अमन की। अमन एक साधारण परिवार से था। पिता की एक छोटी सी दुकान, माँ की उम्मीदें और कंधों पर जिम्मेदारियाँ। लेकिन सपने सपने बड़े बड़े थे। एक दिन उसे शहर की एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आया। उसके सपनों का दरवाज़ा पहली बार खुलने वाला था। बस पकड़नी थी और वो भी आखिरी बस। शाम को दुकान पर अचानक भीड़ बहुत बढ़ गई। पिता की तबीयत भी ठीक नहीं थी और दुकान संभालने वाला कोई और भी नहीं था। पिता ने थकी हुई आवाज में कहा, अमन तू जा बेटा, मैं संभाल लूंगा। अमन ने घड़ी देखी, बस निकलने में सिर्फ 20 मिनट बाकी थे। दिल कह रहा था भागो, लेकिन आंखें, पिता की थकी आंखें, उसे रोक रही थी। और अमन ने वही किया जो दिल ने सही तरह से सोचा, जो उसके दिल को सही लगा, वही किया अमन ने। वो बस की ओर नहीं गया, दुकान की ओर मुड़ गया। समय बीतता गया और बस निकल गई। उस रात अमन छत पर बैठा था, हवा चल रही थी, पर उसके भीतर सब कुछ ठहरा हुआ था। उसे लगा शायद उसका सपना हमेशा के लिए टूट गया है। तभी पिता उसके पास आए, धीरे से उसके बगल में बैठ गए और बोले, अमन तूने आज बस नहीं छोड़ी, तूने आज हमें नहीं छोड़ा। और जो इंसान अपने लोगों को नहीं छोड़ता, किस्मत भी उसे कभी नहीं छोड़ती। उन शब्दों में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे किसी ने टूटे हुए दिल पर मरहम रखती हो। पिता उसके पास बैठे उसका सर सहलाने लगे, उसे तसल्ली देने लगे कि कोई बात नहीं, फिर मौका मिलेगा।

अगली सुबह अमन ने कंपनी में फ़ोन किया। उसने सच बताया कि वो क्यों इंटरव्यू को मिस कर गया। फ़ोन पर कुछ पल की खामोशी रही, फिर एक नर्म सी आवाज़ आई। अमन, हम रोज़ ऐसे लोग नहीं देखते जो परिवार को इम्पोर्टेंस देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। अगर तुम चाहो तो आज दोपहर वीडियो इंटरव्यू कर लेते हैं। अमन की आंखों में चमक आ गई। उसने इंटरव्यू दिया और फिर सिलेक्ट भी हो गया। कुछ रोज बाद जब वो नौकरी ज्वाइन करने के लिए शहर पहुंचा तो बस स्टैंड के पास वही बोर्ड देखा, आखिरी बस 8:30 PM। अमन मुस्कुराया क्योंकि अब उसे समझ आ गया। अब उसे समझ आ गया था, कभी कभी जो मौका छूट जाता है वही हमें हमारी सही मंजिल तक ले जाता है।

0: जिंदगी कैसी है पहेली? सच में जिंदगी एक पहेली ही है। कभी हमें वो मिलता है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती, और कभी वो छिन जाता है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। लेकिन अमन की कहानी और इस गाने की तरह जिंदगी का हर मोड़, हर देरी, हर रुकावट किसी ना किसी बड़ी वजह से होती है। कभी एक बस छूट जाती है और कभी उसी बस के छूटने से हमारी मंजिल बदल जाती है। तो अगर आज आपको लग रहा है कि कोई मौका आपके हाथ से निकल गया, कोई सपना रुक गया या कोई दरवाज़ा बंद हो गया, तो बस इतना याद रखिए, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। किस्मत अभी भी आपके लिए कुछ लिख रही है, और हो सकता है अगला मोड़ ही आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ हो। मैं आपकी अपनी सरिता आपके साथ, आपकी आवाज़ में, आपकी उम्मीदों के साथ, इसी तरह से कल भी और परसों भी आपके लिए चिंतन लेकर आऊँगी। आपकी अप्रिसिएशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भी अगर इनके जरिए पैसे आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी, तो काम बड़ा आसान है। You can do it via the branch. You can go online. You can use the mobile app, Yono mobile app, and उसके जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आज तो रेट भी बड़ा अच्छा मिल रहा है, 128 rupees and 55 पैसास अगेंस्ट 1 sterling pound। डिपेंड करता है कि कितने पैसे आप, कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करा रहे हैं। जितना बड़ा अमाउंट उतना अच्छा आपको रेट मिल सकता है।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Like a Gold.

0: देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार, बेशुमार प्यार ही प्यार फिल्म का टाइटल ट्रैक था ये। 1969 में आई थी ये फिल्म। देखी है आपने ये फिल्म? देखी है तो याद आ गया होगा वो सीन जिस जब ये गाना पिक्चराइज हुआ था। मैंने भी देखी थी ये फिल्म। आई थिंक धर्मेंद्र जी थे इस फिल्म में। यस, अगर हाँ तो बता दीजिए। वैसे सरिता काफ़ी भुलक्कड़ है। अगला गीत भी मेरे दिल के करीब है और आपको पसंद आएगा ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 11:25 हो गया। इट्स 11:25। गुड मॉर्निंग टू यू। इफ़ यू हैव जस्ट ज्वाइन मी, यू जस्ट मिस द चिंतन, जो कि हमारे बहुत से साथियों को बहुत पसंद आया और उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मुझे लिखकर भेजे हैं। थैंक यू एवर सो मच कि बड़ी प्यार से आप हौसला अफजाई करते हैं।
1: This song is brought to you by Kumar Sanu, live at Royal Albert Hall with exclusive radio partner Leica Radio. One date only, May 25th.

0: लता मंगेशकर एंड यशुदास की आवाज़ें शामिल थी इस गीत में। बहुत खूबसूरत फिल्म थी ये भी, अगर आपने देखी है तो अच्छी लगी होगी ज़रूर। अब इतने सारे मैसेजेस, इतनी सारी फरमाइशें भी मुझ तक पहुंच रही हैं, और पड़ोसन का गीत सुनना चाहा था जिन्होंने, उन्होंने तो सुन लिया मेरे सामने वाली खिड़की में, और दूसरे जिन गीतों की फरमाइश मुझ तक पहुंची है, मेरी कोशिश रहेगी कि आज के प्रोग्राम में वो गीत भी मैं शामिल कर पाऊँ।
1: ये है लाइका गोल्ड फील गुड ट्रैक, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और भाई जल्दी से आपसे पूछ लूं, क्या हो रहा है इस वक्त? Are you preparing lunch या घर में बैठे घर से ही काम कर रहे हैं ऑफिस का, लेकिन कान इधर हैं, या फिर मैच के इंतजार में हैं, या हाइलाइट्स देख रहे हैं कल के मैच की? तो जो कुछ भी कर रहे हैं, सिर्फ कान मुझे उधार चाहिए, बाकी आप काम जो भी करते हैं वो करते जाइएगा। आपको ये भी याद दिला दूं कि हमारे यहाँ से दूसरी सर्विसेज भी हैं, लाइका रेडियो 90s एंड लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2, और ये सब प्रोग्राम आप सुन पाते हैं। हमारे जो पॉडकास्ट है उसके भी प्रोग्राम्स आप बहुत पसंद कर रहे हैं, तो इसी तरह से साथ देते रहिए। और एक्स्ट्रा पॉडकास्ट के बारे में बता दूं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी है।
3: ये है
4: लाइका गोल्ड,
0: लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
2: जी हाँ, लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट की अपडेट ये है कि एपिसोड 14 आजकल दिखाया जा रहा है, जो कि UKAFF यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल के बारे में है, जिसे होस्ट किया है रूबी रजा ने। उनकी टीम से बातचीत ऑन राउंड टेबल एंड पुराने अगर आप एपिसोड्स देखना चाहते हैं, विल्स एंड प्रोबेट के बारे में, द अप्रेंटिसिस के बारे में एंड अनफिल्टर्ड, एंड देन होम स्कूलिंग डिबेट के बारे में, तो आप देख सकते हैं। और लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एमेजॉन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
3: ये है लाइका गोल्ड, 10:35 AM।
5: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट travelhubworld.com।
7: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3444-24-hour line.
8: Mom, I'm outside. Yes, literally just landed.
9: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
8: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
9: And you didn't pay those massive roaming charges?
8: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
10: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
11: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
10: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
11: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
10: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
11: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
10: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
11: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
10: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
12: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Laika Radio.
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट मेरा बॉयलर.com। T's and C's apply.
4: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
14: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
4: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन पोटैटो चिप्स।
14: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
15: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
2: Sade dasvein Guru Govind Singh Ji Maharaj da pavitr janam sthan Takht Shri Harminder Ji Patna Sahib de live darshan dekho. Sirf Zee Punjabi Sky 769 te Virgin Media 811 te. रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी

0: क्या बात है, संजय खान पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था। फिल्म का नाम था इंतकाम, हीरोइन थी इस फिल्म की साधना, और आज भी मुझे याद है, मेरी आंखों के सामने सीन आ रहा था। बहुत प्यारी फिल्म थी, नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। स्पेशली इसमें लता जी का गाया हुआ एक गाना जो था वो उनके लिए एक नई अलग सी बात थी, क्योंकि वो ऐसे गाने बहुत कम गाते। कैसे रहूं चुप कि मैंने पी ही क्या है। अगर आप इस बात से इत्तफाक रखते हैं तो ज़रूर बताइएगा। बहुत से साथी लिख रहे हैं, मैं कुकिंग कर रही हूं, कोई आइनिंग कर रहा है, कोई डस्टिंग कर रहा है, कोई कह रहे हैं कि ऑफिस का काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कान आपकी तरफ है, जैसा कि आपने हमेशा कहा। थैंक यू।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, मोर फ्लेवर्स, मोर कन्वीनियंस, मोर यम, ग्रैब योर कोका बोल टुडे।
0: जी हाँ, ये कोका नूडल्स वालों ने ही गीत आप तक पहुंचाया था, जिसे मैंने चुना था फिल्म इंतकाब से। और अब आगे बढ़े।
1: Like a radio. Currency updates are sponsored by Lemfi Mobile App. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: राइट, जल्दी से बता दें कि इस वक्त क्या रेट चल रहे हैं मार्केट में। इंडियन रुपीस आपको एक पाउंड के बदले मिल सकते हैं 128.70, एंड पाकिस्तानी रुपीस 378.98, बांग्लादेशी टका 167, एंड अफगानी 85.81, श्रीलंकन रुपी

0: 35.80 and US dollars 1.36.
1: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
1: Leica Gold.
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: गोल्ड का रेट और बढ़ा है थोड़ा सा, 111 पाउंड्स एंड 31 पेंस का एक ग्राम सोना मिल सकता है।
2: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: ये है
1: Leica
3: Gold.
2: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: जी हाँ, आजकल इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस चल रहे हैं, IPL. चेन्नई सुपर किंग्स कल के विनर थे और वो मैच था 48th मैच एंड दे वन बाय 8 विकेट्स विद 15 बॉल्स रिमेनिंग. और आज 3 बजे मैच शुरू हो रहा है हैदराबाद में और ये मैच है सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच. मैच शुरू होगा तो हम आपको अपडेट भी देते रहेंगे.
2: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
3: Leica Gold.

और जरा सच सच बता दें कि लास्ट आपने ये गाना कब सुना था, मुझे मैसेज लिखकर भेज सकते हैं। राइट, नेक्स्ट आवर में मैं कुछ ऐसी फिल्मों के गीत सुनाऊंगी जो आज ही के दिन रिलीज़ हुई। जानते हैं कौन कौन सी फिल्में आज ही के दिन रिलीज़ हुई? 1960 में हुई थी लव इन शिमला एंड कोहिनूर, एंड आज ही के दिन फिल्म काजल रिलीज़ हुई थी इन 65, 81 में रॉकी एंड 83 में लवर्स, 91 में जीना तेरी गली में। सो ये सारी फिल्में आज ही के दिन रिलीज हुई और उनमें से कुछ एक चुनिंदा गीत मैं आप तक पहुंचाऊंगी इन द नेक्स्ट आवर। मेरा साथ देते रहिए। मैं हूं सरिता सबरवाल। इफ यू जस्ट जॉइन मी, बता दूं कि आई एम सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी और नेक्स्ट मेरे बाद आएंगे बाली ब्रह्मभट्ट जी। Like extra.

0: भाई सिम्टम्स तो सारे प्यार वाले ही हैं, आपको क्या लगा इस गीत को सुनकर? लता मंगेशकर एंड किशोर दा की आवाज़ों में गाया हुआ ये गीत मैंने आप तक पहुंचाया फ्रॉम द फिल्म रॉकी, जो आज ही के दिन रिलीज़ हुई थी। यस, आज ही के दिन 6 मई 1981 में ये फिल्म आई थी, डायरेक्टेड बाय सुनील दत्त। एंड इस फिल्म में उन्होंने संजय दत्त को इंट्रोड्यूस किया था, साथ में थी टीना मुनीम, रीना रॉय, शक्ति कपूर, राखी एंड अरुणा ईरानी। इसका संगीत तैयार किया था राहुल देव बर्मन जी ने, और इस फिल्म में पसंद किया गया था संजू बाबा को, और उसके बाद फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है, आगे आगे बढ़ते रहे हैं। संगीतकार आर डी बर्मन साहब और आनंद बख्शी जी की जोड़ी ने इन गीतों को सराया था और बनाया था और आप तक पहुंचाया था। और जो पहला गाना था वो फिल्म लवर्स से चुना था, और लवर्स भी 1983 की फिल्म थी, जो आज ही के दिन 6 मई 1983 को रिलीज़ हुई थी। बड़जातिया की भारत राजा की ये फिल्म थी, एंड जिन्होंने डायरेक्ट किया था इस फिल्म को कुमार गौरव थे, पद्मिनी कोल्हापुरी थी इस फिल्म में, एंड डैनी डंजनगप्पा एंड तनुजा ने फिल्म में काम किया था। संगीत ये भी था आर डी बर्मन साहब का। बाकी के गाने भी मशहूर हुए थे इस फिल्म के, मोहब्बत करने वालों को, इन ज़माने में सबसे पुरानी, यही प्यार की है कहानी, क्या हुस्न है क्या उम्र है, वो भी गाना ठीक ठीक था। चलिए भी अब आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बता दूं कि आर्टिस्ट ऑफ द वीक की कोई भी फिल्म आज के दिन रिलीज़ नहीं हुई थी। आशा पारिख है हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक, तो उनकी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा सा गीत मैंने चुना है फ्रॉम द फिल्म तीसरी मंजिल। सोचते रहिए कौन सा गाना हो सकता है, पहले जरा ये काम कर लें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: जी हाँ, अगर SBI UK के ज़रिए आप पैसे कहीं भी इंडिया में पहुंचाना चाहते हैं तो आज बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। लेटेस्ट है 128 रुपीज़ एंड 55 पैसा अगेंस्ट 1 British sterling pound। और अगर आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो याद दिला दें कि यू कैन डू इट वाया द ब्रांच, यू कैन डू इट ऑनलाइन, और अगर आपने योनो SBI UK का मोबाइल ऐप डाउनलोड किया हुआ है तो घर बैठे किसी भी वक्त पैसे ट्रांसफ़र करा सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai like a gold.
3: बोले तू क्या कर रहा है रे?
4: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
3: ये तो बताओ कोई पता चला?
5: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
6: तो शुभकामनाएं, देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
3: शीघ्र शीघ्र।
5: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400, बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
7: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गो।
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
10: Herald. New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
11: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall. at 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
10: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
11: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
10: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
12: Discover the best of Portugal with a fantastic Lisbon and Porto Twin City Centre break with Skylord. Fly from the UK and spend 3 nights exploring vibrant Lisbon with its historic streets, trams and riverside views. Then travel by train to beautiful Porto for 3 more nights, discovering its famous wine cellars and charming old town. Skylord prices start from just £339 per person. For multi-centre city break packages with a difference, see skylordcruiseandholidays.com.
13: Call 01923 883 100. Atoll protected. This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code Early Eid Saver online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur ladoos. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
14: Psst. You. Yeah, you. Listening to the radio. Up to whatever. We just wanted to let you know there's a lotto draw coming up and...
15: it could be you.
14: Yeah, what he said. Lotto, from the National Lottery. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
16: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
17: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: वाह, आशा भोसले एंड मोहम्मद रफी साहब की आवाजें गूंज रही थी सिर्फ मेरे स्टूडियो में नहीं, आपके घर में जहां भी बैठे आप इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम को, तो आपने ज़रूर इस गीत के साथ साथ थोड़ा थोड़ा अपनी बॉडी को भी शेक किया होगा ज़रूर। वैसे एक बात कहूँ, करना भी चाहिए, क्योंकि कभी जब इस तरह के गीत प्ले होते हैं तो आपको अपनी बॉडी को हिलाना चाहिए, थोड़ा डांस करना चाहिए, इससे एक्सरसाइज हो जाती है। क्यों, क्या मैंने गलत कहा? वेल, ये गाना आर्टिस्ट ऑफ द वीक के अंडर आप तक पहुंचा था। आशा पारिक थी इस फिल्म की हीरोइन और हीरो थे शम्मी कपूर। बहुत प्यारा संगीत था और मुझे उम्मीद है आप सभी ने पसंद किया। आर टी बर्मन साहब के गीत आज के प्रोग्राम में पता नहीं कैसे बार बार आ रहे। अब तक के इस आवर के तीनों गाने उन्होंने ही कंपोज किए। अब जरा आगे बढ़ लें।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ऐसे क्लासिक गाने आप सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ये जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। एक सूचना हमारे राम जी, हाँ आपने हमारे यहाँ से ज़रूर सुना होगा कि लाइका रेडियो नेटवर्क इज़ द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ द मिथोलॉजिकल शो हमारे राम, स्टारिंग एक्लेम्ड एक्टर आशुतोष राणा एज रावण एंड राहुल आर बुचर एज राम। इट टेक्स प्लेस ऑन बिटवीन 9th एंड 12th ऑफ जुलाई एट लंडन्स एवेंटिम अपोलो। सो अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और टिकट्स के बारे में जानकारी लीजिए और फिर अपनी टिकटें आज ही बुक करा लीजिएगा। एक और सूचना देनी है, वो क्या?
0: This is like a gold.
2: नहीं, ये सूचना नहीं है, ये बताना है मुझे कि आज ही के दिन रिलीज हुई थी फिल्म जीना तेरी गली में। आपको याद है ये फिल्म? नहीं याद है तो चलिए गाना सुनते हैं, याद आ जाएगा।
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ें, और ये फिल्म थी जीना तेरी गली में। और ये फिल्म भी आज ही के दिन 1991 में रिलीज़ हुई थी। कविता कपूर, सूरज एंड अमिता नांगिया ने इस फिल्म में काम किया था। बाबुल बोस का था संगीत और गीत लिखे थे रविंद्र रावल ने। उम्मीद करती हूँ गीत ये भी पसंद आया आपको।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: ये है Leica Gold. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: हिल्लारो अने उम्रो जेवी अक्लेम्ड गुजराती फिल्म्स ना नेशनल एवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह फरी एक वार लईने आव्या छे एक इमोशनल कॉमेडी।
5: तमारो तो जिंदगी छे के फिल्म नी वार्ता।
4: एक यू हार्ट जी कई फील करतु नतु बट वन बीट एंड एवरीथिंग चेंज्ड।
6: तमारो हृदय धबकारो चुकी जाय छे।
4: धबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आर्जव देसाई इन सिनेमास नियर यू।
7: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
8: Atif Aslam live in the UK.
7: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
8: Book your tickets now at AXS.
7: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
8: Exclusive radio partner, Leica Radio. Every child deserves a childhood, but many children in India are forced to leave school far too early. Cry UK is helping children stay in school and build brighter futures. Just £25 could help two children continue their education. Visit www.ukcry.org and help to make a difference.
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
10: मंत्रा हॉलीडेज विशेस यू एंड योर फैमिली अ हॉलीडे सीजन फिल्ड विद जॉय, लाफ्टर एंड अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। एज यू सेलिब्रेट, स्टार्ट प्लानिंग योर नेक्स्ट एडवेंचर विद अस। विजिट www.mantraholidays.co.uk और कॉल 0203-773-6 Treble 3 now. Apta bonded.
11: Mantra Holidays.
12: What's your travel mantra?
13: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाए जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
14: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
13: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
15: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: रवि जी का संगीत, साहिर साहब के लिखे बोल और राजकुमार जी पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था। रफ़ी साहब ने इस गीत को गाकर अमर कर दिया। फिल्म का नाम था काजल, जो आज ही के दिन इन 1965 में रिलीज़ हुई थी। बहुत खूबसूरत फिल्म थी, सारे गाने बड़े अच्छे थे। मीना कुमारी थी इस फिल्म में, राजकुमार, धर्मेंद्र एंड पद्मिनी एज़ वेल। अब आगे बढ़ते हैं और ज़रा बता दें कि ये गीत आप तक पहुंचाया किसने।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
2: ये है Leica Gold.
1: Currency updates are sponsored by Lemfi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 128.72, Pakistani rupees 379.86, Bangladeshi taka 167.48, Afghani is 86.8 and Sri Lankan rupees 436.44, US dollars 1.36.
3: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think Lemfi. Lemfi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download Lemfi now. T's and C's apply.
4: Leica Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: राइट, गोल्ड का रेट इस वक्त मार्केट में 111 pounds and 25 pence पर ग्राम।
1: गोल्ड रेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय Pooja Sweets, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी वेजिटेरियन फूड सप्लायर्स। PoojaSweets.com और विजिटर्स एट ईस्टहैम, हाउंसलो और क्राउली। Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026. Score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England Cricket.
0: राइट भी, कल के मैच के बारे में तो मैं बता चुकी हूँ। चेन्नई सुपर किंग ने बाजी मार ली थी, 8 विकेट से जीत गए थे, 15 बॉल्स रिमेनिंग। और आज मैच है सनराइजर्स हैदराबाद एंड पंजाब किंग्स के बीच में और ये मैच शुरू होगा 3 बजे।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA।
0: और घड़ी की सुनिए, आप मुझे बता रही हैं कि सरिता तुम्हारे जाने का वक्त है। बहुत सारे मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं, सभी ने चिंतन को भी बहुत पसंद किया, मेरे चुने हुए गीत आप सभी को बहुत भाए हैं, जिसके लिए थैंक्स करना चाहूंगी। और अभी अभी देशराज जी, आपने मैसेज भेजा और आपने लिखा, सरिता जी इस गीत में रफ़ी साहब ने कितनी बार अच्छा शब्द कहा और हर बार अलग अलग तरीके से कहा, ढंग से कहा। एक बहुत पुराने इंटरव्यू में इस गीत के बारे में भी सुना था, आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, आप बड़े प्यार से सुनते हैं और चिंतन आपको भी बड़ा भावुक लगा, बहुत अच्छा लगा, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे बाद आ रहे हैं बाली ब्रह्मभट जी, उनका साथ दीजिएगा। मुझे माइक्रोफोन के इस पार से अब इजाज़त दीजिए। मेरी अगली मुलाकात आपसे कब होगी? कल। हाँ जी, कल फिर रवि शर्मा जी की जगह आपकी अपनी सरिता आपके साथ रहेगी। एक और नया चिंतन, कुछ और नई बातचीत और कुछ और बर्थडेज हैं तो उनके बर्थडेज की भी बात करेंगे, लेकिन वो प्रोग्राम ख़ास तौर पर होता है बाली जी का, तो बाली जी का साथ ज़रूर दीजिएगा। चलिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त और इंतज़ार बाली जी की। अगला गीत भी बहुत खूबसूरत है, ये फिल्म भी आज ही के दिन रिलीज़ हुई, वारिस।
2: Leica Gold।
5: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
6: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
5: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
6: गारंटेड।
5: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
6: फोन 02085748410।
5: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: पैक्ड फॉर द ट्रिप। Gifts? Passport?
8: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
9: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
8: Simzy?
9: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
10: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
12: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 02023963-5757. Greens by Danube. Prime location.
11: High appreciation.
12: In Dubai.
13: 105 super hit shows pachi have London ma avi rahyu che. Ek dhamakedar international Gujarati comedy Jai's Entertainment. Laine avi rahya che. Sakhna rejo husband ji. Leena Shah ane Samir Shah saathe. Hasyani full guarantee. Fridays 26 June 27 Patidar Samaj Wembley Park ma. Ratna 8 vage. Tickets booking mate. Visit karo eventbrite.co.uk. Call karo Videorama. अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655
11: लंडन गुड न्यूज आपका फेवरेट आईटेक अब टीआरएस कैश एंड कैरी साउथ हॉल में ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विद बेटर प्राइसेस परफेक्ट फॉर रिटेलर्स ट्रेडर्स टेकअवेज एंड केटरर्स आईटेक इज ओपन 24/7 विद फ्री पार्किंग आईटेक एट यूनिट 123 साउथ ब्रिज वे साउथ हॉल UB24AX वंस यू विजिट यू कम अगेन एंड अगेन
14: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસ માં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે
11: બીએપીએસ મંદિર નું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર
14: યુરોપ ના 3-9 દિવસ ના ટૂર્સ
11: ફ્રાન્સ સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ઇટલી અને જર્મની સાથે
14: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ
11: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે
14: કોલ 02089002323 ધ સ્ટાર ટૂર્સ
11: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન
15: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
1: Up next, Ballybrumbat with Gold Afternoons on Leica Gold. The Ravi Sharma Show on Leica Gold.

0: And that was a beautiful song from Suhana Safar, 1970. और उससे पहले जो गाना था 1977 का, दो गाने 70s के, दोनों हिट, खून पसीना 1977, और उसमें लता मंगेशकर जी ने गाया था मैं तेरी हो गई, यहाँ पे सुमन कल्याणपुर जी ने गाया, और पीपल गेट क्वाइट मिक्स्ड अप एंड दे थिंक इट्स लता मंगेशकर विद सुमन कल्याणपुर. पहले तो बिफोर आई स्टार्ट आई मस्ट थैंक सैंडी शाह. Yesterday he bailed me out so beautifully and मैं इतना परेशान था बिकॉज सोमवार को शाम को बैठकर मैंने रात तक नौशाद जी का पूरा कार्यक्रम तैयार किया हुआ था, उनकी ट्रिब्यूट. और जब ट्यूसडे मॉर्निंग को उठा तो थोड़ा सा फीवरिश फील हो रहा था और कम नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने फ़ोन किया तो ही सेड डोंट वरी आई हैंडल इट. मैंने कहा मैं इतना डिस्टर्ब हूँ क्योंकि मेरा बहुत बड़ा सब्जेक्ट नौशाद जी उनका सब्जेक्ट है आज. तो उन्होंने कहा कि इट्स ओके आई डू इट. एंड द वे ही डिड इट वाज सो इमैक्युलेटली डन. द सॉन्ग्स दैट ही प्लेड दे वर सो ब्यूटिफुली कैरिड आउट. एंड 6 hours की मैराथन की सैंडी शाह ने. सो ऑल आई कैन से टू सैंडी शाह इज Yes, from all of us. Thank you, Sandisha, for that. And of course, when it comes today, I'll match jab pee paunga unano. Aha, ye Suhana Safar. Ye Suhana Safar tha, you can say, a wonderful listener of ours who had come to London from Vancouver. And that happens to be none other than Harpreet. वो हर रोज कनाडा से भी और यहाँ से भी सुनती रहती है. आज सुबह 5 बजे उठ गई बिकॉज शी वॉज जेट लैग्ड. शी हैड गॉन बैक टू कनाडा फ्रॉम यूके. एंड मैंने कहा आहा ये सुहाना सफ़र. एंड अनदर वंडरफुल लिसनर ऑफ आवर्स हमीदा फ्रॉम बेल्जियम एंड शी इज़ ट्रैवलिंग टू मम्बासा एंड शी इज़ गोना मीट इब्राहिम भाई एंड शिवानी भाभीजान हमारे नरगिस के. And I've sent regards. So she's going to also go on Friday. To unke liye bhi ye suhana safar. Wish you bon voyage. And aage jaate hue ek tribute karna hai maine next hour mein. Aisa tribute hai, beautiful tribute. Kyunki Dharmendra ji ko aur Sadhana the actress, you know, Shiv Dasani, un dono ko break dene wala hai ek insaan. जो अपने आप एक एक्टर था, प्रोड्यूसर था, डायरेक्टर था. एंड ही पास्ड अवे ऑन 5th of May 2018. सो इट्स हिज 8th डेथ एनिवर्सरी. और इनकी कहानी बड़ी लाजवाब है. इट वाज ब्यूटीफुल. ही आल्सो रोट स्टोरीज एंड ही आल्सो प्रोड्यूस्ड फिल्म्स, ही डायरेक्टेड फिल्म्स. ताज्जुब की बात है कि सारी फिल्में KKK टाइटल. मुझे मालूम है राकेश रोशन डज फिल्म्स विद के एंड देर आर अदर्स एज वेल, लेकिन इनके तो ट्रिपल के वाली फिल्में KKK. एंड ऑल द फिल्म्स के म्यूजिक डायरेक्टर थे कल्याण जी आनंद जी ऑल्सो फ्रॉम के. सो कल्याण जी आनंद जी एक्सेप्ट फॉर वन फिल्म दैट वॉज विजुषा दैट रिमेन्ड इन द फैमिली देन डिडंट इट. सो उनकी एक ट्रिब्यूट होगी, आपको बड़ा मजा आएगा. स्टे ट्यून्ड विद मी. मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स, अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव, DAB, Alexa, Google Home एंड likeagold.com.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: And if you look at the lovely rates from SBI UK, £1 in British sterling today could get you 128.6 Indian rupees. Remember to make your transfers via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gem In Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakhara, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: पंकज सोडा प्रेजेंट करे छे हास्य थी भरपूर सुपर हिट नाटक बा अमारा बाजीगर कॉमेडी क्वीन लेडी अमिता प्रतिमाटी अने जीतू कोटक साथे यूके ना अलग अलग शहरों मा लाइव राइसलिप अल्बर्टन लूटन पॉटर्स बार फिंचली साउथ लंदन अने ईस्ट लंदन हास्य मनोरंजन अने फैमिली साथे एंजॉय करवानु परफेक्ट नाटक आज एज कॉल करो पी आर पटेल ऑन 07957555226 One inch is a day, Karibuni.
4: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
5: No more worries for me.
6: Southall Travel, at all protected. Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
7: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
6: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
7: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
6: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
10: Herald. New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
11: London, good news! Aapka favorite iTag ab TRS Cash and Carry Southall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTag is open 24/7 with free parking. For iTag at Unit 123 South Bridgeway, Southall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
12: ਸਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਈ 769 ਤੇ ਵਰਜਿਨ ਮੀਡੀਆ 811 ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੀ
13: ਇੱਕ ਬੜੀਆ ਕੜਕ गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो आए हाय मजा आ जाए।
14: अरे समझो हो गया, रॉयल चाय है ना, अब भी बन जाएगी। सिर्फ पैकेट खोलो और गर्म पानी में घोल लो, चाय तैयार, वो भी रॉयल टेस्ट के साथ। रॉयल चाय, झटपट, कहीं भी कभी भी।
15: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com कॉल 0208-767-7627
16: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEVESAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
0: I got news for you.
17: And what is the news?
0: Yes, we got कुमार सानू, यस ही इज कमिंग टू लंदन। वो मैंने आपको हर रोज ये बात कही है और आज कल मुझे मुझे फोन कॉल आया था फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स एंड दे से लास्ट 500 टिकट्स आर लेफ्ट नाउ एंड द किंग ऑफ मेलोडीज कुमार सानू रिटर्न्स टू यूके फॉर वन नाइट ओनली एट द रॉयल आल्बर्ट हॉल ऑन बैंक हॉलीडे मंडे 25th ऑफ मई. Catch the superstar singer at this particular venue, Royal Albert Hall, on Bank Holiday Monday, 25th May. Get your tickets from the venue or Ticketmaster, exclusive radio partner, Laika Radio Network. Gana suniyega Kumar Sanu ka. Laika
18: Gold. Wake up to Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Like a gold.

0: 2028, there are going to be 94 matches and 12 teams. Just for your information.
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorised and regulated by the FCA.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India, bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
3: लंडन एंटरटेनमेंट दी सब तो वड्डी रात आ रही है. फोर पिलर्स एंटरटेनमेंट्स लिमिटेड प्रेजेंस एबीपीडी अवार्ड्स यूके 2026. लाइव परफॉर्मेंसेस बाय नवीन कुंद्रा, मंजीत बॉबी, निकी सेठी ते होर जबरदस्त आर्टिस्ट्स. 9th मई शाम 6 बजे द सेंटर बैंकवेटिंग सुइट साउथ हॉल. फॉर टिकट्स कॉल मंजीत भमरा एट 7956300367. एबीपीडी अवार्ड्स यूके 2026 एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
4: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
5: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
4: Call today on 01923 883 100
5: or go to skylordcruiseandholidays.com.
4: Book with confidence.
5: We're Atoll protected.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन.
9: हिल्लारो अने उम्ब्रो जेवी क्लेम्ड गुजराती फिल्म्स ना नेशनल एवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह पर एक वार लेने आवे छे एक इमोशनल कॉमेडी.
10: तमारो तो जिंदगी छे के फिल्म नी वार्ता.
9: एक यू हार्ट जी कई फील करतु नतु.
10: मारी वार्ता अधूरी छे भाई.
9: बट वन बीट एंड एवरीथिंग चेंज्ड.
11: तमारो हृदय धबकारो चूकी जाय छे.
9: धबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आर्जव देसाई.
12: लोकेशन अहीना करेला अहीज भोगवाना छे.
9: इन सिनेमास नहीं आयु.
13: Every child deserves a childhood, but many children in India are forced to leave school far too early. Cry UK is helping children stay in school and build brighter futures. Just £25 could help two children continue their education. Visit www.ukcry.org and help to make a difference.
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
15: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
1: Across London, this is Bali Brambat on Like a Gold.
15: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. Coach, Eurostar, your flight. Aap choose karo, apna style. Baki sab, Star Tours experience sambhal leta hai. Visit startours.co.uk.

0: ओह वाह वाह वाह, मुझे ये सब गाने सुनकर ना दिल खुश मेरा हो जाता है, और जब पता चलता है कि इन गानों के पीछे कौन था तो और भी मजा आता है। यू नो, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी विद साधना शिवदसानी। साधना शिवदसानी जब 14 साल की थी, 7 साल की उम्र में शी वॉज बोर्न इन कराची, एंड उसके बाद द फैमिली शिफ्टेड टू इंडिया, एंड व्हेन दे केम ओवर टू इंडिया, राज कपूर की फिल्म थी श्री 420, 14 साल की उम्र थी, एंड शी पार्टिसिपेटेड इन दैट पर्टिकुलर फिल्म, एंड इट वॉज एन अनक्रेडिटेड रोल, मतलब के टाइटल्स में नाम नहीं था कहीं भी। फिर 1960 में इन्होंने सशादर मुखर्जी के बेटे जॉय मुखर्जी के साथ, इन्होंने जॉय मुखर्जी की डेब्यू फिल्म थी लव इन शिमला 1960 की। लेकिन इसके बीच में क्या हुआ, जब राज कपूर की फिल्म आई तब इट वॉज अनक्रेडिटेड, लेकिन क्रेडिटेड फिल्म में देखा जाए तो अगर किसी ने साधना जी को ब्रेक दिया तो दैट वॉज इन द फर्स्ट सिंधी फिल्म विच वॉज कॉल्ड अबामा, नॉट ओबामा, इट्स अबाना, अबाना, इन विच द डायरेक्टर वॉज अर्जुन हिंगुरानी। हम अर्जुन हिंगुरानी जी के बारे में बात करते हैं बिकॉज इट इज हिज 8th डेथ एनिवर्सरी। अर्जुन हिंगुरानी वॉज बोर्न ऑन 15th of November 1926 एंड ही पास्ड अवे ऑन 5th of May 2018 एट द एज ऑफ 91। 8th डेथ एनिवर्सरी ऑफ दैट वंडरफुल प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड ऑल्सो एक्टर। इन्होंने अपनी ही फिल्मों में एक्टिंग की थी और कुछ कुछ फिल्में डायरेक्ट की थी, कुछ कुछ फिल्में इन्होंने प्रोड्यूस, डायरेक्ट और एक्ट भी की थी। उनके बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ। इन्होंने लॉन्च किया धर्मेंद्र जी को दिल भी तेरा हम भी तेरे, दिल भी तेरा हम भी तेरे, जिसका गाना अभी आपने सुना, ये वादा करें, वो सुना ना मुकेश जी का और लता मंगेशकर जी का, दिल भी तेरा हम भी तेरे। दैट वाज 1960 में धर्मेंद्र वाज एक्चुअली लॉन्च्ड विद दैट पर्टिकुलर फिल्म, एंड उसके बाद इनका रिश्ता इतना खूबसूरत रहा कि काफ़ी इन्होंने दूसरी 4-5 फिल्मों में काम धर्मेंद्र साहब ने किए, क्योंकि इनकी सब फिल्में थी देवर ऑल ट्रिपल के, टाइटल्स में के सब थे, एक्सेप्ट फॉर वन फिल्म जो थी सल्तनत। जी हाँ, सल्तनत फिल्म 1986 की थी। बिसाइड्स दैट ऑल द फिल्म्स वर के। अब मैं सब नाम फिल्मों के अगर आपको बताऊं तो यू विल नोटिस के बिसाइड्स दिल भी तेरा हम भी तेरे जो 1960 में जो फिल्म की थी, उसके बाद सारी ट्रिपल के की फिल्म्स आने लगी 1970 में, कब क्यों और कहाँ, जिसमें डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे और एक्टर भी थे। कब क्यों कहा के बारे में आई थिंक यस दैट वॉज इंस्पायर्ड बाई लेज डायाबोलिक्स, इट वॉज अ फिल्म, हॉलीवुड फिल्म लेज डायाबोलिक्स 1955 की। अब वो फिल्म वॉज इंस्पायर्ड बाई अ नॉवल, नॉवल का टाइटल था शी हु वॉज नो मोर। अब ये फिल्म इन्होंने ये स्टोरी ली और इसको इंडियनाइज की, और फिर उसके बाद इन्होंने ये फिल्म को डायरेक्ट किया, प्रोड्यूस किया और एक्टिंग भी की उस फिल्म के अंदर। एंड द मेन आई थिंक नेगेटिव रोल में तो प्राण साहब थे, लेकिन इसमें इन्होंने एक किरदार निभाया था, आई थिंक बिहारी नाम था। एंड देन 1973 में कहानी किस्मत की, के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड एक्टर कौन, वी आर टॉकिंग अबाउट अर्जुन हिंगुरानी, जिन्होंने सबसे पहली सिंधी फिल्म डायरेक्ट की थी और साधना को हीरोइन बनाया था। 1977 में खेल खिलाड़ी का, ही वॉज अ डायरेक्टर एंड एक्टर इन दैट पर्टिकुलर फिल्म 1977 की। 1981 में कातिलों के कातिल, के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड एक्टर. 1985 में करिश्मा कुदरत का, उसमें ही वॉज जस्ट अ प्रोड्यूसर. करिश्मा कुदरत का ये फिल्म के अंदर ही वॉज द मेन विलन, करिश्मा कुदरत का. एंड दैट वॉज आई थिंक आफ्टर दैट हिज लास्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर वॉज कौन करे कुर्बानी. कौन करे कुर्बानी, आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर दैट 1991 की जो फिल्म थी कौन करे कुर्बानी, उसमें ही वॉज आई थिंक द लास्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर. उसके बाद उन्होंने प्रोड्यूस की कैसे कहूँ, कैसे कहूँ के प्यार है, कैसे कहूँ के प्यार है 2003 की. 1986 में ही डिड अ फिल्म एज अ प्रोड्यूसर एंड द फिल्म एक्चुअली वॉज सल्तनत. अभी सारी फिल्मों में म्यूजिक वॉज डन बाय नन अदर देन कल्याण जी आनंद जी. हर एक फिल्म जो मैंने मेंशन की, जितनी भी फिल्में, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग थ्रू आउट हिज करियर एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर, एक्सेप्ट फॉर वन फिल्म जिसमें म्यूजिक वॉज बाई विजू शाह. एंड ऐसे वो कैसे कहूँ के प्यार है, वो 2003 की फिल्म जो थी उसमें विजू शाह, एंड ऑफकोर्स दैट्स द सेम फैमिली एज कल्याण जी आनंद जी. सो उनके बारे में मैंने आपको कहा, बताया कि आज इनकी 8th डेथ एनिवर्सरी है. लोग भूल जाते हैं ये सब नाम, क्योंकि इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है. इन्होंने के वाली फिल्में, कितनी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई. एंड वी शुड नेवर फॉरगेट सच वंडरफुल पीपल ऑफ यस्टर ईयर्स जिन्होंने इतना कॉन्ट्रीब्यूशन किया. यस, एंड ही हैड अ गुड लाइफ. एट द एज ऑफ 91 ही पास्ड अवे. एंड धर्मेंद्र साहब के साथ इन्होंने फिल्में की थी कब क्यों और कहाँ, बिसाइड्स दिल भी तेरा हम भी तेरे जो लॉन्च फिल्म थी. कब क्यों और कहाँ, कहानी किस्मत की, खेल खिलाड़ी का, कातिलों के कातिल एंड सब ट्रिपल के वाली फिल्म जो थी उसमें धर्मेंद्र साहब भी इसमें शामिल थे. सो वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द ग्रेट नेम Arjun Hingorani. We shall listen to his songs this hour.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today could get you up to 128.6 Indian rupees. Remember to make your transfers via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert. Gem in Foods. Bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
3: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
4: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
3: ये तो बताओ, कोई पता चला?
5: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून.
6: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
3: शीघ्र शीघ्र.
5: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून. टू बुक कॉल 0208-514-5400. बुक ऑनलाइन एट Eventbrite.
7: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
10: Are we there yet?
11: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
10: Relax, I've booked the Uber already.
11: How? My roaming isn't even working yet.
10: I switched to Simzy before we left London.
11: Simzy? Since when are you the tech expert?
10: Since I decided I want a stress-free holiday.
12: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across
2: across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
10: T's and C's apply.
12: हेल्लारो अने उम्ब्रो जेवी अक्लेम्ड गुजराती फिल्म्सना नेशनल एवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह फरी एकवार लईने आव्या छे एक इमोशनल कॉमेडी।
13: તમારું તો જિંદગી છે કે ફિલ્મની વાર્તા।
12: એક યુ હાર્ટ જે કઈ ફીલ કરતું નહોતું, બટ વન બીટ એન્ડ એવરીથિંગ ચેન્જ્ડ।
14: તમારું હૃદય ધબકારો ચૂકી જાય છે।
12: ધબકારો સ્ટારિંગ દેવેન ભોજાની અને આર્જવ દેસાઈ ઇન સિનેમાઝ નિયર યુ। આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે।
15: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર।
12: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
15: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
12: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ।
15: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે।
12: કોલ 02089002323 ધ સ્ટાર ટૂર્સ।
15: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન।
16: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
17: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
18: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
17: Call today on 01923 883 100
18: or go to skylordcruiseandholidays.com.
17: Book with confidence.
18: We're atoll protected. This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
7: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
19: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
20: Sunno, sunno, are sunno, sunno.

ये फिल्म में भी धर्म जी थे. कब, क्यों और कहां, 1970 की. वी आर डूइंग अ ट्रिब्यूट ऑफ अर्जुन हिंगुरानी.

0: Atco microwave food containers.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02023963577. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: 105 super hit shows pachi have London ma avi rahyu che ek dhamakedar international Gujarati comedy Jay's Entertainment line avi rahya che sakhna rejo husband ji. Leena Shah ane Sameer Shah sathe hasya ni full guarantee. Fridays 26 June 27 Patidar Samaj Wembley Park ma ratna 8 vage. Tickets booking mate visit karo eventbrite.co.uk. Call karo Videorama अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655। सखना रेजो हस्बैंड जी।
6: मंत्रा हॉलीडेज विशेस यू एंड योर फैमिली अ हॉलीडे सीजन फिल्ड विद जॉय, लाफ्टर एंड अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। एज यू सेलिब्रेट, स्टार्ट प्लानिंग योर नेक्स्ट एडवेंचर विद अस। विजिट www.mantraholidays.co.uk और कॉल 02023736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड।
7: मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
8: साढ़े दसवें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पवित्र जन्म स्थान तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब दे लाइव दर्शन देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही।
9: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स।
10: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट।
9: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स।
11: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 02087672142.
12: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 02071321458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
13: This is Laika.

0: फिल्म सल्तनत। अब सल्तनत में ये फिल्म ऑफ कोर्स अर्जुन हिंगोरानी की, द नरेशन इन द फिल्म वॉज बाय रजा मुराद एंड इट द फिल्म वॉज एडिटेड बाय डेविड धवन द ग्रेट प्रोड्यूसर डायरेक्टर। यस, नेक्स्ट सॉन्ग इज टू से हैप्पी बर्थडे टू फमीदा, आई मीन बेबू। बेबू हैप्पी बर्थडे फ्रॉम फरीदा गुलाम अली मामा।
1: This song is brought to you by Kumar Shanu, live at Royal Albert Hall with exclusive radio partner Leica Radio. One date only, May 25th.
0: Kumar Shanu's song, May Mola bless her with choicest blessings, Ameen. That is the daughter of Farida Ghulam Ali, Famida. Famida, Bebu, happy birthday.

0: Our artist of the week is आशा पारेख एंड उषा खन्ना का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी की लिरिक्स. क्या बात दाल भात दिल देखे देखो मजा आया ना. Our artist of the week.
1: You're listening to Bali Brahmat in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
3: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट TravelHubWorld.com.
4: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.40% on non-withdrawable fixed deposits. Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
6: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203-773-6333 now. Apta bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
8: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our radio.
9: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
10: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
11: Ek masaledar chai ke bare mein sochte hi, bas ek hi naam yaad aaye. Unique Masala Chai. इस सर्दी मजा लीजिए यूनिक चाय के अलग अलग मसाले फ्लेवर्स का. सिर्फ गर्म पानी लो और यूनिक चाय के साथ घोल लो. सिर्फ कुछ ही मिनट्स में सबकी फेवरेट यूनिक मसाला चाय तैयार.
12: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
13: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEVESAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
14: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
15: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: लड़के
1: फिल्म जवानी दीवानी, आरडी वर्मा ने बड़ी इफेक्ट्स यूज की थी इस फिल्म में।
0: बिले बिले बिले बिले बिले गिले गिले आखा।
2: Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.
1: फिल्म है सल्तनत और उसका एक गाना है आशा भोसले जी ने गाया, क्या हूं मैं तू जाने ना। दिस वॉज अ मूवी बाय अर्जुन हिंगोरानी। ऑल ट्रिपल के फिल्म्स एक्सेप्ट दिस वन एंड द वन ही इंट्रोड्यूस्ड धर्मेंद्र साहब इन, ही लॉन्च्ड हिम इन अ फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे। एंड सल्तनत ब्यूटिफुल फिल्म जिसमें नरेशन था हमारे रजा मुराद जी का। And it's going to be Sandy Shah coming next.
3: मुझे तू पहचानी ना।
1: 303rd day of Radio, Leica Radio, Midlands and Raj Paddan on there.

0: ड्राइव विद सैंडी शाह। ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट ट्रेवल हब world.com।
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: Hillaro and Umbro Jevi acclaimed Gujarati films na national award winning director Abhishek Shah. For ek var lai ne aavya che ek emotional comedy.
5: Atamar to jindgi che ke film ni vaarta.
4: Ek ew heart ji kai feel kartu natu. But one beat and everything changed.
6: Tamaru radae. ધબકારો ચૂકી જાય છે.
4: ધબકારો સ્ટારિંગ દેવેન ભોજાની અને આર્જવ દેસાઈ ઇન સિનેમાઝ નિયર યુ.
7: 105 સુપરહિટ શોઝ પછી હવે લંડનમાં આવી રહ્યું છે એક ધમાકેદાર ઇન્ટરનેશનલ ગુજરાતી કોમેડી. જયઝ એન્ટરટેનમેન્ટ લઈને આવી રહ્યા છે સખણા રેજો હસબન્ડજી, લીના શાહ અને સમીર શાહ સાથે હાસ્યની ફૂલ ગેરંટી. ફ્રાઈડે 26 જૂન 27 પાટીદાર સમાજ વેમ્બલી પાર્કમાં રાતના 8 વાગે. ટિકિટ બુકિંગ માટે વિઝિટ કરો eventbrite.co.uk, કોલ કરો વિડીયોરામા અથવા કોલ કરો મિસ્ટર બી 07860280655. સખના રહેજો હસબન્ડજી.
8: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ.
9: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल.
8: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
10: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 02208-767-7627.
11: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and multi-jewel laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
12: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Gold Drive with Sandy Shah. 7 stations. 1 podcast, 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk. Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.

0: Gold Drive with Sandy Shah.
1: ये है Like a Gold 10:35 AM
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: Travel Hub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.
4: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
5: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
4: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
5: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
4: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
6: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड, वेस्ट लंदन और इल्फर्ड, ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन

0: भाई जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी। दो बैक टू बैक गीत आप सबको सुनाए मोहम्मद रफी की आवाज में। कर्ज फिल्म से था दर्द दिल, आए हाय मजा आ गया भाई। उसके पहले मेरा मन, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे। एक्चुअली मेरे पास में सच में जवाब नहीं है कि मैं जब रोज शाम यहाँ पे आ रही है तो क्यों तुम्हें चाहे। एक्चुअली चाहने के लिए तो बहुत सारे रीजंस है ना। इतना प्यार से वेलकम करते हो आप लोग सारे, OMG सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। इतना प्यार से जब कोई स्वागत करता है, हेलो जी कैसे हैं जी, एंड आप लोगों के साथ में इतना प्यारा रिश्ता बन गया है ना। हर कोई मुझे एक नाम दे रहा है और मैं उन सबको अलग अलग नाम दिए जा रही हूँ। सो इस प्यारे रिश्ते में स्वागत है आप सबका। और आज का सवाल तो अश्विनी देगी, पक्के में देगी। और सवाल क्या है रहने वाला है भाई, सवाल यही है कि आपके यहाँ पे मतलब हर घर में देखो मैगी तो बनी है, पर सच्ची सच्ची बनाना कि बताना, मतलब मैगी तो बनाना लेकिन आप ये बात मुझे सच्ची बताना कि क्या सच में आपके घर में मैगी केवल और केवल 2 मिनट में बनती है। एकदम मुझे ऑनेस्टी से आंसर चाहिए ना, क्योंकि मेरे घर में तो मैगी क्या ही बताऊं। चलो आप ही आंसर्स दो।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today could get you up to 128 Indian rupees and 40 paise. Remember to make your transfers via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Ashwini, in for Anisa Nazir. On the evening show.
2: पंकज सोडा प्रेजेंट करे छे हास्य थी भरपूर सुपरहिट नाटक बा अमारा बाजीगर, कॉमेडी क्वीन लेडी अमिताभ प्रतिमाटी अने जीतू कोटक साथे यूके ना अलग अलग शहरों मा लाइव। राइसलिप, अल्बर्टन, लूटन, पॉटर्स बार, फिंचली, साउथ लंडन अने ईस्ट लंडन। हास्य मनोरंजन अने फैमिली साथे एंजॉय करवानु परफेक्ट नाटक। आज ज कॉल करो PR पटेल ऑन 07957555226। One inch is a day, Karibuni.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just 711,000 pounds.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: Search is changing.
6: Customers aren't just using Google anymore.
5: They're asking AI.
6: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
5: One business, one recommendation.
6: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
5: Will your business be the answer?
6: Or the one that got left behind?
5: The future of search has already started.
6: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
5: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
7: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
8: No more worries for me or you.
9: Southall Travel, at all protected.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट मेरा बॉयलर.com. T's and C's apply.
11: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
12: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
11: मसालेदार मसाला टैंगी टोमेटो सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
12: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
5: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
1: Leica Radio Network. Proud to support the Asian Founders Awards by Barclays Eagle Labs and De Montfort University Leicester. Nominate an Asian founder in one of the 9 categories. Log on to LeicaRadio.com and the Leica Radio mobile app for details.
13: Leica Cool, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno LeicaGold.com pe.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
14: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
15: Chhunka gira re

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ye hai Like a Gold.
3: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 24 मिनट्स पास्ट 7। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी। सवाल मैंने आज आप सबसे पूछा है कि क्या आपके यहाँ पे मैगी जब आप बनाते हैं तो क्या वो 2 मिनट में बनती है क्या? भाई मेरे यहाँ पे वो बिल्कुल भी 2 मिनट में नहीं बनती, बिकॉज हमारे पे मुंबई स्टाइल का मैगी बनाते हैं तो उसमें सब्जियाँ डाल के वो पूरा वो पानी बॉइल करके फिर उसमें मैगी डाली जाती है और उसके बाद में चीज़ डाले जाते हैं। तो या माई फैमिली लव्स मैगी दैट वे। तो उसमें कभी शेजवान चटनी या शेजवान सॉस ऑल दो स्टफ डाल के ना, मतलब ऐसा स्पाइसी वाला मैगी बनता है। तो 2 मिनट में तो कतई बन नहीं सकता। इट एक्चुअली टेक्स मोर देन 7-10 मिनट्स नियरली। भाई आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि मैं कैसी हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि वेंसडे आज है और वेंसडे मेरा सबसे फेवरेट डे होता है वीक का। और 2 दिन इधर 2 दिन उधर, तो जब मिड वीक आ जाते हैं तो वैसे भी फील गुड वाला एक वेंसडे हमारी ज़िंदगी में होता ही होता है। फॉर मी इट्स एवरी वेंसडे। अच्छा, आज हमारा आफ्टरनून में इंस्टाग्राम लाइव हुआ है। सो अंकुर फ्रॉम ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो से एंड मी फ्रॉम हियर, सो हम दोनों ने बहुत सारी गप्पें मारी है। तो ज़रूर हमारे इंस्टाग्राम पे जाइएगा, ओके? तो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका गोल्ड रेडियो पे, और आप लोगों को हम वहाँ पे ही मतलब मस्ती वाली गपशप मारते हुए दिखेंगे। तो ज़रूर जाके देखिए और दीजिए भी अपनी कमेंट्स दीजिए कि ऐसे भी मस्ती गपशप में कितना मज़ा आता है। नेक्स्ट ट्रैक जो आपको सुनाने वाली हूँ महेंद्र कपूर की आवाज़ में, दिस इज़ सच अ फैंटास्टिक ट्रैक है ना। पूरी कोशिश होती है कि जितना वेरिएशन आप सबके लिए लाया जाए उतनी पूरी वेरिएशन मैं लाती हूँ। हमराज फिल्म से सुनाने वाली हूँ आप सभी को ये गीत।
2: द इवनिंग शो विद अश्विनी। Finalist at the Radio Academy Arias 2026.

0: updates for London at Breakfast and Drive.
1: भाई एक सर्वे में ये पाया गया है कि लोग घर पे जो खाना बनना है मतलब फूड मेन्यू को लेके ज़्यादा परेशान है रादर देन द पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ देयर कंट्री, क्योंकि खाने की जो भी मेन्यू बनना है सुबह दोपहर शाम, अब खैर एनवे लोगों का डाइट जो है काफ़ी तरीके से वो इम्प्रूव हो गया है, पहले के हिसाब से लोग कम खाते हैं और पर कई जगह पर अच्छा खासा मतलब चार टाइम अभी भी खाया जाता है, और क्या मेन्यू बनाया जाए इस चीज़ को लेके घर के लोग ज़्यादा परेशान होते हैं और उस पे से घर में अनबन भी होती है। आई मीन दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग सर्वे ना, कि जहाँ पे पता चलता है कि भाई देश में पॉलिटिकली क्या हो रहा है वो अभी इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन मेरे घर में खाना क्या बन रहा है। आप कहोगे क्या हो गया अश्विनी, आज मैं आती सी मैगी का सवाल फिर खाने का सवाल, ना ना डोंट वरी, मेरे घर पर मैं पास्ता वास्ता बना के आई हूँ अच्छे से, है ना। Yeah, this is again interesting. Pasta, wasta. We'll talk about this as well in some time. Right. So the first feature, yaadon ki baraat, aap sabke liye leke aayi hoon. वॉल्यूम आप रखिएगा बिकॉज मधुमती से जो ये गीत आपको सुना रही हूँ लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में, आई एम श्योर यू विल बी एंजॉयिंग दिस ट्रैक।
0: दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो।
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: Packed for the trip? Gifts? Passport?
5: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
4: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
5: Simzy?
4: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
7: लंदन एंटरटेनमेंट दी सब तो वड्डी रात आ रही है। फोर पिलर्स एंटरटेनमेंट्स लिमिटेड प्रेजेंस ABPD अवार्ड्स UK 2026 लाइव परफॉर्मेंसेस बाय नवीन कुंद्रा, मंजीत बॉबी, निकी सेठी ते होर जबरदस्त आर्टिस्ट्स। 9th मई शाम 6 बजे द सेंटर बैंकवेटिंग सुइट साउथ हॉल। फॉर टिकट्स कॉल मंजीत भमरा एट 7956300367। ABPD अवार्ड्स UK 2026 एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क। CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
8: Every child deserves a childhood, but many children in India are forced to leave school far too early. Cry UK is helping children stay in school and build brighter futures. Just £25 could help 2 children continue their education. Visit www.ukcry.org and help to make a difference.
9: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
10: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
11: Minar Jewelers. Agar aap sona bechna चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 0208-767-7627।
12: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
13: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
12: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
13: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
12: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
14: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
6: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Chahe Europe ho ya duniya ka dusra kona, har trip feel hota hai the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: Pika Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For £1 you'll get 128 rupees and 50 paise. 128 Indian rupees and 50 paise. 378.96 Pakistani rupee. 167.03 Bangladeshi taka. 85.64 Afghan Afghani. 435.11 Sri Lankan rupee. 1.35 US dollars and 175.58 Kenyan shilling.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
0: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £111.22 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. Ashwini, brightening up your weeknights.
1: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ. इट्स 44 मिनट्स पास्ट 7. कई लोगों के यहाँ पे डिनर बनाना शुरू हुआ होगा, किसी का डिनर हो गया होगा, किसी ने सोचा होगा कि नहीं यार मैंने तो सपर लिया है. सपर इज लाइक 5 बजे के पहले जो हो गया सो हो गया, अभी खाना पीना है ना. क्योंकि जनरली ऐसा हो जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ आपके डाइजेशन को लेकर भी दिक्कतें होती हैं, विच इज़ वेरी कॉमन बात. मतलब इसमें नया मैं कुछ बता नहीं रही हूँ, लेकिन जिस तरीके से लोग कॉन्शियसली खाना सीख गए हैं दैट एक्चुअली मेक्स अ चेंज इन देयर लाइफ स्टाइल एज वेल. काफ़ी एक्टिव फील करते हैं आप और आपकी एनर्जी लेवल भी अच्छी होती है. बहुत खाने से भी ना शरीर भी ऐसा हैवी लगने लगता है. तो अपनी खाने पीने की आदतों की तरफ जरूर आप लोग ध्यान दे रहे हैं और आपकी एंटरटेनमेंट की तरफ ध्यान दे रहे हैं हम. अगला गाना आप सबके लिए आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, एंड दिस इज़ फ्रॉम हमजोली.

0: India cricket score updates. Brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: आज IPL मैच में सनराइजर्स हैदराबाद एंड पंजाब किंग्स के बीच में मैच हुआ, जिसे SRH सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता 33 रन से।
0: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorised and regulated by the FCA.
1: यस, टिक टिक करते हुए घड़ी कह रही है, एक बार फिर से समय बता दो लोगों को और ये कौन सा शो चल रहा है वो भी बता दो। ओके, इट्स 50 मिनट्स पास्ट 7। यू हैव ट्यून्ड इनटू लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। सो आज अंकुर फ्रॉम ग्रेटर मैनचेस्टर एंड मी फ्रॉम लंदन, तो हम दो रेडियो प्रेजेंटर्स ने खूब गप्पे मारी और ये गपशप जो है आपको इंस्टाग्राम जो है लाइका रेडियो मैनचेस्टर का जो इंस्टाग्राम है उस पर आपको देखने जरूर मिलेगा कि हमने क्या गपशप मारी है ना। बड़ा मजा आया हम दोनों ने जब गपशप मारी। एक तो ही इज़ फ्रॉम मुंबई एंड आई एम फ्रॉम पुणे, तो ऐसे हम नेबर्स निकल गए, पड़ोसी पड़ोसी। और फिर क्या था, महाराष्ट्र से थे तो फिर वड़ा पाव एंड देन मिसल पाव, सबकी बातें हुई हैं, रेडियो जर्नीज के बारे में बात हुई, बड़ा मज़ा आया। एंड आप लोगों से भी अभी पता चल रहा है कि भाई इवनिंग जब आप आराम से बैठते हैं और जब हमारा शो सुनते हैं तो कितना सुकून आप लोग महसूस करते हैं इस म्यूज़िक के साथ में, है ना। म्यूज़िक है ही ऐसी चीज़ जो हम सभी को एकदम रिलैक्स कर देता है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ माई जॉब कमिंग हियर एंड इंटरैक्टिंग विद ऑल ऑफ यू, एक म्यूज़िकल फैमिली हम लोग हैं और इस म्यूज़िक की वजह से आप और हम बंध चुके हैं, है ना। तो ये बंधना जो है मंडे से फ्राइडे तक होता है, हाँ, हर शाम 7 से 10 बजे तक। तो मैं आ रही हूँ, कल भी परसों भी हम लोग गपशप करेंगे। लास्ट ट्रैक की तरफ आप सबको ले चल रही हूँ।
0: This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02 0039635757. Greens by Danube, prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
5: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
4: Call today on 01923 883 100
5: or go to skylordcruiseandholidays.com.
4: Book with confidence.
5: We're Atoll protected.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
0: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
7: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
0: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
7: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
0: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
5: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
7: Atif Aslam live in the UK.
8: Dil diya galla karange na.
5: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
7: Book your tickets now at AXS.
5: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
7: Exclusive radio partner, Leica Radio.
9: London, good news! Aapka favorite iTech ab TRS Cash and Carry Southall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, Southall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
10: भक्ति प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी।
11: मत जाओ काना, क्यों जा रहे हो?
12: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
10: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला।
12: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा।
10: कृष्णावतारम 7 मई से आपके नजदीकी सिनेमाज में।
12: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।
13: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of 4 amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
10: The Evening Show with Ashwini.
0: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.

0: सेकेंड आवर में आपकी हमारी एंट्री हो चुकी है भाई, जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लंदन में एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। सेकेंड आवर आप लोगों के लिए जो फीचर होता है वो है इमोशन ऑफ द डे, वो अभी तो नहीं, कुछ देर बाद मैं प्रस्तुत करने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले बात करते हैं इन दो गानों के बारे में विच हैव प्लेड फॉर यू। तीन देवियां विच वॉज रिलीज इन 1965 किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में, यार मेरी तुम भी हो गजब। उसके पहले था हिना फिल्म से मैं हूँ खुश रंगिना। ये जो गीत है ना मैं हूँ खुश रंगिना, ये मुझे ना बहुत ही रिफ्रेशिंग सॉन्ग लगता है। एक तो हिना थी भी कितनी सुंदर ना, बहुत प्यारी दिखती थी इस फिल्म में, लता मंगेशकर की आवाज़ ओए होए मज़ा आ जाता है। तो आगे तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और आप लोगों का साथ भी आ रहा है भाई। ऐसा है कि मिड वीक आ गए आप और हम, है ना। चलिए रैंट डे, मतलब अगर आपको कोई है नहीं आपके पास कुछ सुनाने के लिए, दिल ज़रा भारी भारी हैवी हैवी हो रहा है और लग रहा है यार कोई तो मेरी बात सुन सकता, तो अश्विनी है ना यहाँ पे, है ना। ऐसा करते कि वेंसडेज जो हैं आप आके अपनी दिल की बात निकाल दीजिए, नो भड़ास नो ज़्यादा रोना धोना, ओके। बट होता है ना कभी कभी हमें लगता है कि भाई कोई हो जिसको हम अपनी बातें बता सकें, बहुत लंबी लंबी बातें ना बताएं, छोटे से इसमें बताएं, आई एम हियर टू लिसन टू यू, लेकिन नॉट ऑन द कॉल्स एंड ऑडियो मैसेज भी मैं सुन नहीं सकती, वी कैन ओनली रीड योर मैसेजेस, ओके। तो अगर आप लोग हमें कॉल कर रहे हैं तो आपका कॉल हम ले नहीं पाएंगे, और अगर आप हमें कुछ ऑडियो मैसेजेस भी भेजते हैं तो वो भी हम सुन नहीं पाएंगे, ओके। पर आपकी दोस्त अश्विनी यहाँ पे है आप सबका साथ देने के लिए। अगला गाना ब्यूटिफुल ट्रैक सदमा फिल्म से, ये सुदास की आवाज में, सुनिए और फिर बताइए कैसे लगा।
1: लाइका गोल्ड लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन।

0: weekdays for London at Breakfast and Drive.
1: Look at you. The future is unpredictable at times. But the Open University are the experts in online learning, allowing you to fit study around your life. What's more, you'll have support from dedicated tutors every step of the way. Now, suddenly your possibilities are open. Search the Open University to find out more. The Open University. The future is open.
0: This is Ash Winnie, in for Anissa Nazir, on The Evening Show. Like a gold. The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
2: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
0: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
2: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
0: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Emprio Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio. Step into the new grand showroom of Gargels Couture, Southall.
2: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
0: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
2: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gargels Couture, now open 7 days a week.
0: Gargels Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड।
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
7: दिस ईद स्किप द क्यूज एंड सेव विद अंबाला। प्री ऑर्डर बिफोर द 10th ऑफ मे एंड एंजॉय 20% ऑफ योर ऑर्डर। यूज कोड Early Eid Saver online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
0: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa, and LeicaGold.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: Emotion of the day. Emotion.

0: emotion of the day. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ye hai
3: Laika Gold.
2: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 35 मिनट्स पास्ट 8। यू हैव ट्यून्ड इनटू द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। आज का दिन है 6th of May, तो आज के दिन क्या क्या सेलिब्रेट किया जाता है। आज सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल नर्सेस डे। वी से थैंक यू टू ऑल द नर्सेस हु टेक केयर ऑफ अस। नेशनल बेवरेज डे, वाटर सेविंग वीक, नेशनल टूरिस्ट अप्रिसिएशन डे, नेशनल स्कूल नर्स डे, डेफ अवेयरनेस वीक, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोफेशनल डे, नेशनल डे टू प्रिवेंट टीन प्रेगनेंसी एंड इम्पॉर्टेंट इज इंटरनेशनल नो डाइट डे। सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग कि आज के दिन जो है लोगों ने खूब खाया और ज़बरदस्त खाया। क्या होता है ना, बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बात होती है। हम सभी पूरी कोशिश करते हैं कि जो फिल्म स्टार्स होते हैं और जो मैगजीन्स में हम पिक्चर्स देखते हैं, जो फोटोशॉप्ड होती हैं, है ना, वहाँ पे स्पेशल एडिटिंग करके वो पिक्चर्स आती हैं। कुछ लोग सच में मेंटेन करके रखते हैं अपने आप को, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हर किसी की बॉडी अलग होती है। वी कैन नॉट कंपेयर एन एप्पल टू ऑरेंज, राइट, क्योंकि हर फ्रूट अलग होता है। तो वैसे ही हर किसी की बॉडी भी अलग होती है। हाँ, अपने आप को हेल्दी रखे, फिट रखे, ये बहुत ज़रूरी है कि अपने एज के हिसाब से आप सुपर डुपर फिट रहे। बैक इन सम कंट्री ऐसा होता है कि अगर आप स्लिम ट्रिम हैं तभी आप फिट हैं, ना मेरे हिसाब से ऐसा है। अगर आपको कोई भी केमिकल अपनी बॉडी में नहीं डालना पड़ता, यानी कोई भी टैबलेट्स या मेडिकेशन अगर आप नहीं ले रहे हैं, मतलब आप फिट हैं। दिस इज माई डेफिनेशन ऑफ बीइंग फिट। उत्सव का गाना आप सबको सुनाया क्योंकि फील गुड वेंसडे है और फील गुड वेंसडे में इससे अच्छा और बढ़िया गाना तो और कोई हो ही नहीं सकता था।
0: This song is brought to you by Kumar Shanu, live at Royal Albert Hall with exclusive radio partner Leica Radio. One date only, May 25th.
1: Ye hai Leica Gold, 10:35 AM.
0: Leica Radio, finalist at the Radio Academy ARIA's 2026.

0: Apprentice Unfiltered, the homeschooling debate. Like our extra podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
1: Like our extra. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट TravelHubWorld.com.
4: हिल्लारो अने उम्रो जेवी अक्लेम्ड गुजराती फिल्म्स ना नेशनल एवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह फरी एक वार लईने आव्या छे एक इमोशनल कॉमेडी. एक यू हार्ट जी कई फील करतु नहोतु बट वन बीट एंड एवरीथिंग चेंज.
5: तमारो हृदय धबकारो चुकी जाय छे.
4: धबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आर्जव देसाई इन सिनेमास नियर यू.
6: एवरी चाइल्ड डिजर्व्स अ चाइल्डहुड बट मेनी चिल्ड्रन इन इंडिया आर फोर्स्ड टू लीव स्कूल फार टू अर्ली. क्राई यूके इज हेल्पिंग चिल्ड्रन स्टे इन स्कूल एंड बिल्ड ब्राइटर फ्यूचर्स. जस्ट £25 कुड हेल्प 2 चिल्ड्रन कंटिन्यू देयर एजुकेशन. विजिट www.ukcry.org एंड हेल्प टू मेक अ डिफरेंस.
4: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे.
7: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर.
4: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
7: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अने जर्मनी साथे.
4: दर्शन पण अने यूरोप पण.
7: सीट्स जल्दी भराई रही छे. आज ज बुक करो स्टार टूर साथे.
4: कॉल 0208900-2323. द स्टार टूर्स.
7: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन.
8: दिस ईद स्किप द क्यूज एंड सेव विद अंबाला. प्री ऑर्डर बिफोर द 10th ऑफ मे एंड एंजॉय 20% ऑफ योर ऑर्डर. यूज कोड अर्ली ईद सेवर ऑनलाइन और इन स्टोर. फ्रॉम स्टनिंग गिफ्ट टिन्स टू रसमलाई एंड मोती jewel ados. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
9: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
10: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
8: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
10: Call today on 01923-883-100
8: or go to skylordcruiseandholidays.com.
10: Book with confidence.
8: We're Atoll protected.
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Ashwini, brightening up your weeknights.
11: Leica Gold.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: For £1, you'll get 128 rupees 47 Indian rupees and paise. That is 378.92 Pakistani rupee, 166.93 Bangladeshi taka, 86.02 Afghan Afghani, 435.19 Sri Lankan rupee, 1.35 US dollars and 175.62 Kenyan shilling.
12: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £111.22 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ. इट्स 48 minutes past 8. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. शो का नाम है द इवनिंग शो विद अश्विनी. तीन अमेजिंग फीचर्स के साथ आपके लिए हाजिर हुई हूँ. यादों की बारात इन फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर में इमोशन ऑफ द डे, अब थर्ड आवर में आपको गज़ल सुना रही हूँ कव्वाली. ज़रूर लिख के भेजिएगा. अब चल रहे आखिरी गीत की तरफ और यही गीत हमें ले चलेगा 9 o'clock की न्यूज़ की तरफ. अनुराधा पौडवाल

0: मनहर उदास की आवाज में हीरो विच वॉज रिलीज इन 1983 उसी फिल्म से सुना रहे हैं आपको अगला गीत.
1: London's biggest classics all day. Like a gold. This is Ashwini in for Anisa Nazir on the evening show. Like a
2: gold. Discover the best of Portugal with a fantastic Lisbon and Porto twin city center break with Skylord. Fly from the UK and spend 3 nights exploring vibrant Lisbon with its historic streets, trams and riverside views. Then travel by train to beautiful Porto for 3 more nights, discovering its famous wine cellars and charming old town. Skylord prices start from just £339 per person. For multi-center city break packages with a difference, see skylordcruiseandholidays.com.
3: Call 01923883 Atoll protected.
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
5: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our रेडियो.
6: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
7: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02023736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.
8: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ.
9: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल.
8: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
10: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of 4 amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
11: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 02071321458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
1: द इवनिंग शो विद अश्विनी. 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app. This is the Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK.

0: भाई हम ये कह सकते हैं जो बात इस जगह पे है यानी लाइका गोल्ड रेडियो पे है जिसे आप सुन रहे हैं लंदन में एंड लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर में, बात जो इस जगह पे है वो कहीं पे भी नहीं। बहुत ही अमेजिंग से गीत मन की आंखें एंड उसके पहले कृष्णा फिल्म, दोनों फिल्मों से आपको सुनाया हमने गीत। नेक्स्ट ट्रैक जो सुनाने जा रही हूँ, ओए होए होए होए, हंसते जख्म से तुम जो मिल गए हो।
1: Ashwini, brightening up your weeknights. Ye hai
2: Laika Gold.
1: Laika Gold. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today could get you up to 128 Indian rupees and 40 paise. Remember to make your transfers via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: The Evening Show with Ashwini.

0: गजल फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: भैया अगला ट्रैक जो आपको सुना रहे हैं अमेजिंग ट्रैक है, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स, अगर तुम ना होते इस फिल्म से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में.
0: ये है लाइका गोल्ड. Leica Radio, finalist at the Radio Academy ARIA's 2026.

0: sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKER. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKER Gold. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £111.22 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: टिक टिक करते हुए घड़ी एक बार फिर से याद दिला रही है, कह रही है अश्विनी जरा टाइम चेक तो करवा लो। इट्स 45 मिनट्स पास्ट 9। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। शो का नाम द इवनिंग शो पे अश्विनी तीन अमेजिंग फीचर्स के साथ आपके लिए हाजिर हो जाती हूँ हर शाम मंडे से लेके फ्राइडे तक 7 बजे से लेके 10 बजे तक। पहले आवर में यादों की बारात, सेकेंड आवर होता है आप सभी के लिए इमोशन ऑफ द डे, थर्ड आवर होता है गजल या कवाली। पैटर्न आप सबकी समझ में अभी आ गया है, कल होगा थर्सडे, थ्रिलिंग थर्सडे। और थ्रिलिंग थर्सडे में थ्रिलिंग शब्द जो है वो अभी से बताता है कि यार थ्रिलिंग मतलब ये क्या लेके आएगी कल। अब कल की मस्ती कल के लिए हमेशा की तरह इतना ही कहूँगी, प्यार मोहब्बत से रहें, प्यार दो प्यार लो। प्यार अगर ज़िंदगी में है तो बहुत अच्छी है ज़िंदगी, कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं अपनी ज़िंदगी को यार, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है, कॉम्प्लिकेटेड ना जाने क्यों हम लोग उसे बनाते रहते हैं। एंड पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए, विच आई एम श्योर आप लोगों में से कोई भी अपना पावर यूज़ नहीं करता होगा, क्योंकि आप सभी संगीत से जुड़े हुए प्रेशियस एंड प्योर सोल्स हो। On that note, I have to say कि please take care of yourselves। कल शाम में हम मिलेंगे, थर्सडे यानी वीकेंड के करीब तो आप और हम पहुँच ही गए। हमेशा की तरह अपना साथ देते रहिए साइलेंट लिसनर्स अराउंड द ग्लोब। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास में है तो ज़रूर हमें मैसेज करते चलिए। ऑन दैट नोट अगेन क्या यार, आई हैव टू से बाय बाय, गुड नाइट, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स।
0: ये है लाइका गोल्ड।
2: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 years of experience, 40,000 passengers every year. Star Tours is trusted for a reason by travelers who appreciate familiar comforts. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: Joker Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24-hour line.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
3: फोन 0208574-8410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
7: भक्ति, प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी।
8: मत जाओ काना, क्यों जा रहे हो?
9: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
7: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला।
9: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा।
7: कृष्णावतारम 7 मई से आपके नजदीकी सिनेमाज में।
9: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।
10: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे।
11: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर।
10: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
11: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे।
10: दर्शन पण अने यूरोप पण।
11: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर्स साथे।
10: कॉल 0208900-2323 द स्टार टूर्स।
11: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
0: लाइक अ रेडियो नेटवर्क proud to support the Asian Founders Awards by Barclays Eagle Labs and De Montfort University Leicester. Nominate an Asian founder in one of the 9 categories. Log on to LaikaRadio.com and the Laika Radio mobile app for details.
12: Sari Raat, Bollywood Classics ka saath. Sirf Laika Gold par.

पन से ढोलकों का ये मचलना। मैं तो हर एक अदा तो आँखों से चूम लूंगा, दुनिया बहुत बुरी है दुनिया से बच के चलना। ओ यार।

0: Like our gold. The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
1: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
0: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
1: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
0: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
2: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
3: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स Your travel mantra.
4: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
1: Atif Aslam live in the UK.
4: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
1: Book your tickets now at AXS.
4: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
1: Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
4: दिस ईद स्किप द क्यूज एंड Save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEVESAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
1: Like a gold par har raat ki yahi reet. Purane magar sada bahar geet.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: 105 सुपरहिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हसबंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी। फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे। टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk, कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655। सखणा रेजो हसबंड जी।
4: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
5: Are we there yet?
6: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
5: Relax. I've booked the Uber already.
6: How? My roaming isn't even working yet.
5: I switched to Simzy before we left London.
6: Simzy? Since when are you the tech expert?
5: Since I decided I want a stress-free holiday.
7: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
8: T's and C's apply.
9: Leica Radio Network. Proud to support the Asian Founders Awards by Barclays Eagle Labs and De Montfort University Leicester. Nominate an Asian founder in one of the 9 categories. Log on to LeicaRadio.com and the Leica Radio mobile app for details.
0: Classic Nahumi, aapke apne Leica Gold par.